जी हाँ, ये गीत था फ्रॉम द मूवी राम लखन, आपको याद होगा। बहुत ही हिट मूवी ये भी था, जिसमें अनिल कपूर, जैकी शरॉफ, माधुरी दीक्षित ने काम किया था। मेरे ख्याल से इसमें अनुपम खेर भी था, और बहुत अच्छा मूवी था। और उस समय था जब ये जो चलता था कि जिसमें अनिल कपूर और जैकी शरॉफ और माधुरी दीक्षित हो, तो मूवी हिट ही होना था। तो चलो हम नेक्स्ट गीत आपको सुनाते हैं, पैसा वो पैसा, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है, जिसमें ऋषि कपूर ने काम किया था। ये गीत आपको आशा है कि पसंद आएगा। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि अब हमारा समय हो चुका है, हम अलविदा कहेंगे और ये गीत आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी सरडे में, फिर किसी और टॉपिक या किसी और जो इवेंट हमारे पास रहता है, या तो फिर कुछ बतलाने को रहता है, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, और सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।